0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।
6: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल बिंदास बातें करता हूं या जिक्र करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूं इस कार्यक्रम में, और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको ये पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं, तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी। तो इस तरीके से यूं कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
1: जी मुझे बेहद खुशी है, और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
0: थैंक यू सर, ये मेरी खुश नसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ?
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण मिला हुआ है। आज भी महात्मा बुद्ध वहाँ लेटे हुए हैं, और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ आते रहते हैं। हाल ही में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
0: जी।
1: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छे मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहाँ कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें हैं।
0: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे, और मैंने अभी आपका एक गाना भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो

0: We have been welcoming all good thoughts from across the world. That's why India is still surviving and in a win-win situation across the world.
1: Nice. चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है. यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे.
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
1: चला गया. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना. देवानंद साहब पर ये गाना फिल्माया गया है. सिंगर आई थिंक रफी साहब है.
0: रफी साहब
1: क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूँ. तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं. सच बात तो ये है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं. एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है।

0: है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है. आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है. कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं. गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर इवन विद अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज. और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे स्वीकार करता हूँ. जो मेरे पास आ गया वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है. और जहाँ तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियाँ हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है या नहीं जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी.
0: क्या बात,
1: इफ यू हैव वर्दिनेस दैट विल रिफ्लेक्ट. तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही.
0: क्या
1: पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में.
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत.
1: बहुत तो जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है. और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माय ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड.
0: वाकई खुशी होती है
1: जी.
0: उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया. जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते. आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो FM है या एक कॉलेज का YouTube चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है. अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर. शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर.
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती. तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा. आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं. चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथाह भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर जाना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है और
0: बड़े अच्छे
1: एस डी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ. उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: प्लीज प्लीज.

मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पार।

0: मांझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था सर से बात कर। जब हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा साक्षात्कार हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं। और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग हैं, बड़े मायने हैं।
0: सही कर।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी सिंगर को। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं। चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है। और जब आप क्लासिकल जानते हैं तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है। वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
0: क्या बात?
1: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है वही आवाज के रूप में बाहर आता है।
0: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है, तभी आप किसी को।
1: अब किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा।
0: तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है तो किशोरदा का कोई गाना।
2: हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। लगती हो भली, हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
1: और वो गगन आप है गगन जी।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या हुआ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
1: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जो मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, कि जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो।
0: क्या बात,
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
0: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
0: आए है,
1: देखना है तो नदी के पार देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती हैं, आपके सामने कुछ नहीं
1: है। जी, बेहद
0: खुद पर और खुदा पर यकीन कर, मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं है और अपना हौसला बुलंद नहीं है तो कोई हमारी मदद नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ईश्वर भी खुदा भी उन्हीं बंदों की मदद करता है दोस्तों, कि जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर वही कहेंगे कि सुखद परिणाम, वो परिणाम आपके फेवर में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, स्टूडेंट्स को यूं कहूं कि गुरु मंत्र दिया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय, टेक केयर।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं

सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आएगी दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
1: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।
2: हाय, मैं हूं रणवीर जी, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में 9:05 हो चुके हैं, 12 जून है यानी कि फ्राइडे का दिन, और वीकेंड की तैयारी, कल है सैटरडे, उसके बाद संडे, संडे को फंडे में आप तब्दील करेंगे, यानी कि 2 दिन की आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं। कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो बहुत सोचकर समझकर संभल कर जाइएगा, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, tuned all your Suru Sharda 90.8 FM with me, mere yani Gagan ke saath. Aye hai, mashallah, subhanallah, beautiful track, all your Suru Sharda 90.8 FM.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:07 हो चुके। 12 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। खास बात यह कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि घने बादल छाए हुए हैं, कब बारिश हो जाए। अभी कल की अगर हम बात करें तो आंधी तूफान बारिश और ऐसे ही येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो लापरवाही मत बरतिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखिएगा। और जब आप ऑन रोड होते हैं, किसी व्हीकल पर हैं, यानी कि सपोज करिए कि आप बाइक पर हैं और जैसे आंधी तूफान शुरू हो गया तो एक सेफ साइड आप चले जाइए और अपना बचाव करिए। दूसरी बात ये कि अक्सर हमने देखा है कि जब बिजली गरजती है, बरसती है तो कहीं ना कहीं हानि होती जरूर है। तो खुले गगन के तले आप मत खड़े होइएगा फोन लेकर, क्योंकि जैसी संपर्क होता है बिजली का, आकाशीय बिजली का, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जनधन हानि होती है। सो प्लीज प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, खास बात यह है कि बरसात का जब मौसम शुरू होता है तो नदी नाले उफान पर होते हैं, यानी कि सरकारी अमले का जो काम है वो अगर साफ सफाई पहले से ही हो जाए तो मुझे लगता है कि जल भराव की स्थिति होगी नहीं। जल भराव की स्थिति होगी फिर वही रोना धोना हम सब शुरू करेंगे मिलके। जैसे कि AQI आता है, जैसे कि सर्दियां आती हैं तब अलग रोना धोना शुरू होता है, लेकिन हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि साफ सफाई में ही ईश्वर का वास होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:10, 12 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: राजेश कुमार है, मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
1: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
0: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल इंतजार तो हम सब भी कर रहे थे मौसम का मिजाज कब बदलेगा। अभी कुछ रोज पहले अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत बहुत ज्यादा गर्मी हमने महसूस की, लेकिन हम सबको यकीन था कि बारिश आएगी और निश्चित तौर पर ये जो फर्क है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। फर्क पड़ रहा है, यानी कि अपडेट निकल कर ये सामने आ रही। कल हमने बात की येलो अलर्ट की, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि दिल्ली NCR में कल जो अचानक मौसम बदला है उसकी तरीके से यूं कहें कि माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज आंधी, कड़कती बिजली और धूल भरे तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। हमने देखा है कि पेड़ पौधे गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि दिल्ली NCR में उन लोगों ने, एक्सपर्ट ने, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरीके से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो बहुत सोच कर समझ कर आगे बढ़ेगा। अपडेट निकल कर ये भी सामने आ रही है कि उत्तर पश्चिम भारत, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वायुमंडल में अचानक जो उथल पुथल हुई है, ये उथल पुथल शुरू हो चुकी है और इसको जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ये दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। और रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे जरूर और हम किन किन सावधानियों को ध्यान में रखें इसके बारे में भी बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आय हाय माशाल्लाह, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं। लाइब्रेरी में से ये खुद ब खुद निकल कर गाना मेरे सामने आया है और मुझे लगा कि ये गाना निश्चित तौर पर हमें प्ले करना चाहिए। मैंने दिल से कहा, रोग फिल्म का ये गाना, केके की आवाज़ में इरफान खान पर ये फिल्माया गया गाना और आज दोनों ही हमारे बीच नहीं है लेकिन यादें उनकी हमारे साथ हैं। नीलेश मिश्रा साहब के बोल, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होश आवाज में चलाएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। आए आए माशाल्लाह।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: तेरी मेरी गल नहीं बनी, प्रिया की आवाज में ऑल योर सुरुश्रादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या बात है,
1: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं बहादुर, बड़ी बहादुरी से सामना करता हूं गगन का। सुन रहे हैं आप मुझे सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। ये क्या था, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला हाय नमस्कार मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मुझे लगा थोड़ा वजन बढ़ेगा।
0: ऑलरेडी तुम्हारे बातों का वजन है।
2: ये भी सही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें झेलते रहिए।
0: नहीं, हमें सुनते रहिए, क्योंकि अपडेट हम आपको हमेशा रखते हैं। हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रेड अलर्ट उसको कहते हैं जहां जान माल के नुकसान का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। IMD ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले कुछ घंटों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी कड़कड़ाती बिजली, धूल का गुबार और गरज बरस के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन डिटेल निकलकर यह सामने आ रही है कि मजबूत इमारतों में आप शरण लें, यानी कच्चे मकान के आसपास आप बिल्कुल भी ना खड़े हों, कमजोर संरचनाओं से दूर रहें। देखिए ये हेडिंग्स निकलकर आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, टीन शेड, साइन बोर्ड कच्चे मकानों और जो निर्माणाधीन मकान है, जहां मकान बन रहे वहां बिल्कुल मत खड़े होइएगा। वजह यह कि आंधी तूफान में गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेड़ों के नीचे आप न रुकें, क्योंकि आंधी में पेड़ उखड़ने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब बिजली कड़कती है तो हो सकता है कि उससे जनधन की हानि होती ही होती है। और खिड़कियों से भी दूरियां बनाकर रखें, जो जलाशय हैं, तालाब हैं, नदियां हैं,

0: इस दौरान वहां से आप अपने आप को दूर रखें। वेदर सिस्टम का असर अगले 24 से 48 घंटों तक बना रह सकता है, इसलिए सतर्कता ही इस मौसम में सबसे बड़ा बचाव है। सो प्लीज लापरवाही मत बरतेगा। ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन, और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीप शिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है, सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। पन्ना की तमन्ना।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। टाइम्स का लेबल था और ये गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुनो शारदा यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है SSMFE यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। शारदा का ये सुनो शारदा 90.8 एफएम एक सामुदायिक रेडियो। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कि जब यहाँ आप आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को, सीखने को, समझने को बहुत नज़दीकी से आपको मिलती हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों से मेरा मतलब ये है कि जो अनुभवी लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर आ चुके हैं, जैसे कि मैं बिग एफएम में मैंने काम किया, मिस्टर राशिद जी हैं जो एक एंकर के तौर पर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और स्टार न्यूज़ में उन्होंने काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो नजदीकी से प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें आपको जानने को, समझने को मिलती हैं। और उसके बाद प्लेसमेंट की जब बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर यहां से निकले हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे स्कूल्स की मैं बात करूं तो जब आप यहां आएंगे तो यहां के माहौल को आप देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, एक्टिविटीज को देखेंगे, प्लेसमेंट की बातों को जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो बहुत कुछ आपको यहां से सीखने समझने को मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक बार यहां आएंगे हां तो यहीं के होके रह जाएंगे। मतलब हम काम अच्छा करते हैं तो काम अच्छा दिखाएंगे और बताएंगे भी, इसलिए आप यहाँ एडमिशन लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर, अर्थात तुम कहो हम यहाँ। ये क्या था, हिंदी रूपांतरण अनुवाद भी जरूरी है। चलिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ 9:43। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: ये मीनू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये प्रशांत है मेरा। तेरा?
2: चले?
1: चले?

0: हिमेश रेशमिया और भूमंडल की आवाज में।
1: भूमंडल? हाँ लिखा ये,
0: वो रानू मंडल है।
1: अच्छा मैं अभी पुआ खा के आ रहा हूँ ना, भूमंडल वो जवान पे चढ़ गया, सॉरी। रानू मंडल जी की आवाज में, वेरी गुड, बहुत अच्छा खाती है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। इन्फोटेनमेंट के साथ सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम आपके साथ जुड़े होते हैं। इन्फोटेनमेंट भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी, कहते हैं ना, ख्याल रखना पड़ता है कि मनोरंजन का भी, अच्छे गाने होते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मौसम के मिजाज के बारे में बातें की, यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, एडमिशन का दौर चल रहा है उसके बारे में बात की। अब मैं बात करना चाहता हूं कि माँ बदौलत इस नतीजे पर पहुंचे हैं, यानी कि कहते ना कि माँ बदौलत इस नतीजे पर पहुंची है, और ये बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि AI यानी कि जिसको हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो शामिल हो गया। ChatGPT की बात हो, Gemini की बात हो, AI की बात हो, जब ये सारी चीज़ें आ रही थी या पहले भी अगर कोई चीज़ आई है तो निश्चित तौर पर हलचल ज़रूर हुई है कि जॉब्स जाएंगी, ये होगा वो होगा। मुझे लगता है कि ये सब चलता रहता है, ये एक पार्ट का लाइफ, कहते हैं ना लाइफ का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक प्रारंभिक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने की वो बातें कर रहे हैं। 20 जून उन्होंने एक टाइमलाइन निर्धारित किया है कि 20 जून 2026 तक वो आम नागरिकों से, जनता से, वकीलों से, न्यायिक अधिकारियों से और जो भी अन्य हितधारक हैं उनसे सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं AI से रिलेटेड। तो भैया अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं फिर मत कहिएगा कि हमने अपनी बात नहीं रखी, तो आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं कि इसका योगदान कितना सही रहेगा, कितना अहित हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये खास बात थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।
0: पैकेट में तुमको भेजे चीज पुरानी,
1: हाँ
0: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
1: हाँ ये पुराना गाना नए तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सुरुशाता 90.8 FM पर।
0: शाहरुख खान ने गाया था वो गाना, और देखो ट्रेन चल रहा है,
1: मतलब पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा।

0: हमारे पंकज भैया पूछ रहे हैं कि मौसम कब तक खराब रहेगा।
1: तो तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा सुनते रहो सुनो शारजा 90.8 एफएम।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर रोज हम आपको अप टू डेट रख रहे हैं कि आने वाले समय में मौसम के मिजाज के बारे में अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं, यानी कि कुछ रोज तक ऐसे हालात रहने वाले हैं। और भी कल परसों की अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट की बात की गई थी, आज रेड अलर्ट की बात की गई है। तो यानी कि कहीं कोई जनधन हानि ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। और अगर आप कहीं आ जा रहे हैं, आने जाने का कोई प्लान है, तो पिकनिक के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो मौसम की अपडेट के साथ आप आगे बढ़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि पिकनिक हाँ जाम में फंस जाए और वहीं पिकनिक हो जाए। बड़ी खुशी होती है एक पिता को, एक अभिभावक को, गार्जियन को, मम्मी पापा को, यार दोस्तों को, सबको, समाज को, जब बच्चा तरक्की करता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है। और एक ऐसी खुशी हम सबको मिलने जा रही है, और एक ऐसी खुशी द्रविड़ परिवार को मिल रही है, क्रिकेट में मिल रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ जूनियर द्रविड़ की। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट में एक और नया द्रविड़ की एंट्री होने जा रही है, और राहुल द्रविड़ के छोटे नवाब साहब यानी कि अनुवय द्रविड़ को अगले महीने श्रीलंका दौरे के लिए टीम में इंडिया की अंडर 19 वनडे टीम में उनको चुन लिया गया है। और वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, और घरेलू क्रिकेट में लगातार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, अपना लोहा मनवाया है, अपने यूं कहिए कि लोगों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से उनका ये चयन हुआ है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि 2028 की तैयारी का एक हिस्सा भी है, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ फादर बहुत खुशी राहुल द्रविड़ को हो रही होगी। और जब भी हम खबरें देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी खुशी मिलती है कि वाकई कितनी मेहनत, कितना एक परिश्रम रहा होगा अनवय द्रविड़ को तैयार करने में। राहुल द्रविड़ साहब का सैल्यूट है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9-11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम, ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
6: Suno Sharda.
7: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
8: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
9: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
10: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
8: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है।

क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें, आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें, सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें, धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें, दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है, अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुआ।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अरे कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखा दें, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है. सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था.
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था. सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से. इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर. और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं. आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी. आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान, और वो भी लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आपके कल्याण के लिए, आपके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और हमारे बहुत से किसान बहन भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल प्रत्येक पात्र किसान भाई को 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और ये सहायता राशि सीधे किसान बहन भाइयों के बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें हर 4 महीने बाद किसान भाइयों को 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसान भाइयों को इस योजना के पैसों से खाद, बीज और अन्य साधन जुटाने में सहायता मिल जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि इस योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो खुद भी आजकल

तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अपने फोन के जरिए आप जाइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जो के है pmkisan.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, जोत का ब्यौरा, यानी कि जो आपकी खतौनी है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि आपके नाम कितनी जमीन है, वो दस्तावेज, और साथ में आपके बैंक खाते की पासबुक, तभी आपका पंजीकरण होता है। और इसके बाद आपके पंजीकरण का ब्यौरा राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन किसान मित्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड, आपकी खतौनी और आपकी बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है और जो जमीन की खतौनी है उसमें नाम कुछ है, या बैंक की जो पासबुक है उसमें नाम कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और ना ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण होगा और तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, बहुत ही अच्छी ये योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि केंद्र, या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान बहन भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उसमें लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती होती है, चाहे आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, दवाइयों की बात करें, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी क्योंकि ज्यादा लाग लगेगी। अब वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए? कई बार ऐसा होता है कहीं अन्य जगह से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा ब्याज लगता है जो कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब खेती करें तो कैसे करें। तो इसका सीधा समाधान है, सरकार ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी के नाम से ज्यादातर हमारे किसान बहन भाई इसको जानते हैं, परिचित हैं। तो जिन किसान बहन भाइयों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है बनवाने के लिए कि आपके नाम जो जमीन है आप उसके कागज ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, और भी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता कर लीजिए कि हमको केसीसी बनवाना है तो किन किन दस्तावेजों की और आवश्यकता होगी। वहां पर आप सीधे मैनेजर साहब से मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका जो केसीसी है वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और फिर आपको खेती करने में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है और जितना पैसा आप निकालते हैं उसी पर ब्याज आपका लगता है। अगर बैंक के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता है, यानी कि आप पैसा समय से लेते हैं, समय पर जमा करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना वो बढ़ा दी जाती है। तो किसान मित्रों, अभी तक अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा। आप अपने नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं और वहाँ पर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। और आइए अब आपको एक और देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या यूं कहें किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, इसके अलावा तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास पहले से ही किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किसान बहन भाइयों, आप भी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान से एक देशभक्ति रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
2: FM। नवजात शिशु लड़की हो या लड़का उसकी एक समान देखभाल करें।
3: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
2: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
3: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
3: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM। सुनो शारदा
5: 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे नव्या, और आज हमारी आपसे एक खास मुलाकात हो रही है कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर, जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की नई कहानी को लेकर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हिंसा अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि हम अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर किसी के विरुद्ध अत्याचार करें, और ये अत्याचार किसी भी रूप में हो सकता है। हिंसा के कई रूप होते हैं जो अक्सर ज्यादातर महिलाओं के साथ ही देखे जाते हैं।
7: हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह की हिंसा की शिकार हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि उनके साथ जो भी होता है वो हिंसा ही है और किस तरह की हिंसा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से अपरिचित है।
6: हिंसा का एक दूसरा रूप घरेलू हिंसा होता है, और आज एक ऐसी ही कहानी घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई लेकर हम आपके बीच मौजूद है। यह कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जहां पैसे की लाचारी तो थी ही, लेकिन उन्हें कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। शादी के बाद 6 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन 7वें साल भगवान की दया से वो महिला गर्भवती हुई और उसे एक बेटी हुई। अपनी इकलौती बेटी को दोनों पति पत्नी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। पैसे की लाचारी होती हुई भी दोनों अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। उसे बड़े नाजों से पालते थे। दोनों ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम मेघा रखा। मेघा वक्त के साथ बड़ी होती गई। एक वक्त आया जब मेघा 4 साल की हो गई थी। जब मेघा 4 साल की हो गई थी तब उसके पिता को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। कहीं से व्यवस्था करके वो मेघा का दाखिला पास के एक स्कूल में करा देते हैं, जहां पर उनकी अच्छी खासी जान पहचान होती है और जान पहचान होने की वजह से मेघा की फीस में थोड़ी सी माफी हो जाती है। मेघा के पिता किसी भी तरह मेघा की पढ़ाई पूरी करवाना चाहते थे और उन्होंने जैसे तैसे मेघा की पढ़ाई पूरी भी करवा दी। मेघा अपने माँ बाप की इतनी दुलारी थी कि उसे घर का कोई काम ही नहीं आता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे कोई काम करवाया ही नहीं था। मेघा के पिता की स्थिति जैसी थी उतने में ही वो मेघा को खुश रखते थे, उसकी हर जिद पूरी करते थे। वैसे तो मेघा इतनी सुंदर थी कि उसे जो एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव में भी होते थे। पास के ही गांव का जमींदार, जिसने मेघा की सुंदरता के बारे में सुना और मेघा को देखने उसके घर आया, उसने मेघा को देखा और उसके पिता से मिलकर अपने बेटे के लिए मेघा का हाथ मांगा। मेघा के पिता बहुत खुश हुए क्योंकि मेघा की शादी के लिए खुद रिश्ता उनके घर आया था। वो तो शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेघा और उसकी माँ शादी के लिए अभी तैयार नहीं थे। उसके पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की और बताया कि हमारे पास पैसे की कमी है और हम चाहकर भी इतना अच्छा रिश्ता मेघा के लिए नहीं ढूंढ पाते। ये सारी बातें समझाने के बाद मेघा की माँ इस शादी के लिए तैयार हो गई। मेघा और नकुल की शादी भी हो गई और जब मेघा अपने ससुराल गई तो उसने नकुल से कहा कि मैं अभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पहले तो नकुल मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मान गया और चुपचाप सो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मेघा की सास का व्यवहार मेघा के साथ कुछ ठीक नहीं था। मेघा की सास हमेशा उसे इस बात के ताने देती थी कि तुम्हारे पिता ने हमें एक पैसा नहीं दिया और ना ही तुम्हें कोई सोने की गहने दिए। मेघा ने बताया कि मेरे पिता अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग खुद हमारे लिए रिश्ता लेकर गए थे और इसीलिए जल्दी जल्दी में मेरे पिता कुछ दे नहीं पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे ये ताने मेघा को हर गलती पर सुनने पड़ते थे। एक दिन मेघा ने अपने पति नकुल से कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर काम करने दो, मैं भी कोई नौकरी करना चाहती हूँ। नकुल तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पहले मुझे पिताजी और माताजी से बात करने दो। मेघा ने कहा चलो ठीक है। जब अगली सुबह नकुल ने अपने पिता से मेघा के बारे में बोला तो पिताजी ने नकुल को डांटा और कहा कि अब ये दिन आ गए कि पत्नी के कमाए हुए पैसे इकट्ठा करोगे, क्या तुम इतने पैसे नहीं कमा पाते कि अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सको। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि वो पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है। पिता ने नकुल को डांटा और डांटते हुए कहा कि हमारे घर की परंपरा यही है कि हमारे घर की महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं निकालती, अगर कहीं जाना हो तो पति या परिवार की किसी व्यक्ति के साथ ही जाएंगी। हमारे घर की ये परंपरा है कि यहाँ पर सूट नहीं साड़ी पहनना होता है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और ना ही कर सकती हैं। नकुल चुप हो गया। वो माँ के पास गया और सारी बातें माँ को बताया। माँ ने भी बिल्कुल यही बोला कि जो तुम्हारी दादी ने किया वही देखकर मैं करती चली आई और अब यही सब तुम्हारी पत्नी को भी करना होगा। नकुल ने पूरी कोशिश की कि मेघा की ख्वाहिशों को वो पूरा करे, मेघा जो करना चाहती है वो करे, लेकिन उसके माँ बाप ने परंपरा का नाम देकर साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम हमसे अलग हो जाओ या फिर इसे कहीं और लेकर चले जाओ। विवश होकर नकुल ने भी मेघा को मना कर दिया। मेघा बहुत उदास हुई और उसे ये लगने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उसने आज तक जो भी पढ़ा लिखा वो अब किसी काम का नहीं। कुछ दिनों तक मेघा शांत रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से अपने सास और ससुर से बात की। उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी कि ये सब हमारे घर की परंपरा नहीं, महिलाओं पर अत्याचार है। हमारे पूर्वजों ने महिलाओं से अपनी मर्जी से जीने का हक छीन लिया है, और जिसे आप लोग परंपरा का नाम देकर आगे भी जारी रखना चाहते हैं। मेघा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेघा की सास उस पर चिल्लाई और उसे बुरा भला बोली। इसके बाद उसने नकुल से मेघा को उसके मायके छोड़ाने को कहा। नकुल माँ बाप को कुछ कह नहीं पा रहा था, और वो जैसा कह रहे थे वैसा करता जा रहा था। चाहता तो वो भी था कि मेघा पढ़ी लिखी है और उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, वो जो चाहती है वो करे, लेकिन माँ बाप और समाज ये सब देखकर वो डर रहा था। माँ के कहने मुताबिक वो मेघा को उसके मायके छोड़ाया। जब मेघा अपने मायके चली गई तो बिना डरे उसने एक स्कूल में अध्यापिका के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हुई। वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। जब ये बात नकुल और उसके माँ बाप को पता चली तो नकुल के माँ बाप ने मेघा को ससुराल बुलाने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसने हमारी इज्जत पूरे समाज में उछाल दी है। अब बात इतनी बढ़ गई कि उसके सास ससुर ने तलाक के कागज भी मेघा को भेज दिए। मेघा चूंकि पढ़ी लिखी थी, उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए। तलाक का कागज लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से पूरी बात बताई। पुलिस ने मेघा की पूरी मदद की, क्योंकि मेघा चाहती थी कि उसकी सास ससुर को कोई ऐसा आदमी समझाए जिसकी बात उन्हें समझ आ जाए। उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई सजा ना दे, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करे। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और इस बात की धमकी भी दी कि अगर मेघा को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप लोगों को सजा हो सकती है। और इस डर से मेघा की सास ससुर संभल गए और मेघा को पूरी आजादी मिल गई।
8: हिंसा करने वाला कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपका पति हो, बेटा हो, बहू हो या सास हो। हम आए दिन खबरों में मौत की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह से महिलाओं के मौत की खबर होती है। इसलिए समझदार बने और

0: उनके साथ आए दिन कोई ना कोई हिंसा होता ही रहता है।
1: हिंसा शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, वो चाहे किसी भी वर्ग का पुरुष हो या स्त्री हो।
0: तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी हिंसा हो रहा है तो वन स्टॉप सेंटर या महिला थाना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 यानी 1090 या 112 की मदद लेकर आप इस तरह की हिंसा को रोक सकती हैं। क्योंकि अगर आप सुनेंगी नहीं, समझेंगी नहीं, तो अपनी चुप्पी को तोड़कर कभी भी आप हिंसा को नो नहीं बोल पाएंगी। इसलिए जरूरी है सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
1: अगर आपके साथ हुई हिंसा का कोई भी सबूत आपके पास है तो उसे भी आप पुलिस से जरूर साझा करें। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक कानून बनाया गया है जिसके तहत आप अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। ये अधिनियम घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी या फिर साथ रह रहे जोड़ीदार, बहनों, माताओं, बेटियों, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों से रक्षा करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले को कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित जरूर किया जा सकता है। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। हमें हिंसा को सहकर उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें हिंसा पर रोक लगाना है और ये कहना है कि सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
0: और हम महिलाओं को अपना अधिकार समझने की जरूरत है कि हमारा अधिकार क्या है। अपने अधिकार, अपने हक किसी को छीनने ना दे। अपने अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ें। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 यानी 112 पर कॉल करके मदद भी ले सकती है, जहां आपके परिचय को गोपनीय रखा जाता है और आपकी मदद भी पूरी तरीके से की जाती है। और अगर आपको मेघा की ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आपको भी ये लगता है कि इस कहानी से आप दूसरों की या खुद की मदद कर सकती हैं, तो जरूर करें।
1: उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई कहानी के माध्यम से ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी।
0: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था हिंसा को नो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, तो दीजिए हमें जाने की इजाजत। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक इंतजार हमारा। सुनते रहिए आप
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: रमनोज काय मुलट काय बैठा हो, का बात होगी?
2: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हम सो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
1: तो का हुआ, मिलो ना? तो
2: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
1: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दिया
2: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
1: तो का बात है
2: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
1: ए तो यार, इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
2: तो अभी वो ठीक ना होवे?
1: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीको लगवा लिया हो और प्रमाण पत्र में न लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण न लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, यो सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यो बस एक ही बार ठीक हो गए।
2: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकु करनी क्या होगी?
1: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वही नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वही वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा जाएगी। या के अलावा, अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
2: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
1: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM

भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुषादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोवा, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में। आप सभी बच्चों

0: को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे इस समय मजे कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले रहे होंगे और अपने घर परिवार में रहकर अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ खूब सारी बातें करते होंगे। मजा आ रहा है ना आपको? हमें भी मजा आता है जब हम आपसे बात करते हैं। पता है बच्चों, आज हमारे साथ कौन है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हालांकि मेरा मन नहीं है ये बताने का कि कौन है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। पता है बच्चों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आस्तिक स्कूल में पढ़ते हैं जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आस्तिक की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आज वे आपके साथ मजेदार बातें करने के लिए आप सबके बीच मौजूद हैं। तो आस्तिक, शुरू करते हैं हम अपनी आज की बातचीत। तैयार हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों, आप सबको अपने स्कूल के दिन तो याद आते होंगे, और याद आता होगा वो खेल का मैदान जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ खूब सारे मजेदार खेल खेलते हैं। क्यों आस्तिक, आपको भी याद आता है अपना स्कूल?
1: बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, ये बताइए कि आपको अपने स्कूल की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आ रही है?
1: अपनी टीचर्स और वहाँ का प्लेग्राउंड।
0: प्लेग्राउंड की बात आई है तो फिर खेलों की बात भी याद होगी।
1: हाँ।
0: तो आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: बर्फ पानी।
0: अच्छा, बर्फ पानी। पर ये कौन सा खेल हुआ?
1: इसमें एक पकड़ने वाला होता है
0: और वो
1: बर्फ होता है और हम उससे बच के भागते हैं। और अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो वो बोलेगा बर्फ, तो वो जम जाएगा वहाँ पे। जब तक उसे पानी नहीं बोलेगा वो वहाँ से नहीं हिल सकता।
0: यानी कि जब कोई बर्फ बन जाएगा और स्टैचू फॉर्म में हो जाएगा, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आके उसे छू कर पानी ना बोले, तब तक वो स्टैचू बना रहेगा।
1: हाँ। और जब कोई बच्चा 3 बार बर्फ बन जाता है तो उसके बाद उसकी बारी आ जाती है।
0: यानी कि दूसरे बच्चों को छूने की उसकी बारी आ जाती है। ये तो बहुत मजेदार खेल है। अगर हमारे बच्चों ने इस खेल को बहुत ध्यान से सुना है तो अपने घर में इस खेल को खेल सकते हैं। तो इस खेल को खेलने के लिए हमें शायद किसी मैदान की जरूरत ना पड़े। हम अपने घर में यूं ही वैसे ही बहुत भाग दौड़ करते हैं, तो ये बर्फ पानी का खेल भी हम अपने घर में आराम से खेल सकते हैं। अच्छा बच्चों, पता है जब स्कूल की बात आती है तो प्लेग्राउंड की बात आती है, यानी कि खेल के मैदान की बात आती है, और जब खेल के मैदान की बात आती है तो तरह तरह के खेलों की बात आती है। तो हमारे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर आप बच्चे भले ही न देख पाएं, लेकिन मैं और आस्तिक कोशिश करेंगे कि आपको उस खेल के मैदान में अपनी बातचीत के जरिए ले चलें। तो आस्तिक, आप हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को ये बताइए कि इस तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यानी कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं?
1: 3 बच्चे लंगड़ी टांग नामक खेल खेल रहे हैं।
0: यानी कि लंगड़ी टांग का खेल वह खेल है जिसपे हम एक पैर पर दौड़ते हैं, है ना?
1: हाँ जी।
0: और
1: 2 बच्चे बातें कर रहे हैं। 1 बच्चा ताली बजा रहा है।
0: शाबाश।
1: 5-6 बच्चे छुप रहे हैं।
0: हाँ। और इस छुपने वाले खेल को हम क्या कहते हैं?
1: छुपन छुपाई।
0: वेरी गुड। तो 5-6 बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आखिर ये बच्चे कहाँ कहाँ छिप रहे हैं?
1: ये बच्चे दरवाजे के पीछे, झाड़ी के पीछे और पेड़ के पीछे छिप रहे हैं।
0: तो यानी कि हमारे प्लेग्राउंड में, यानी कि खेल के मैदान में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके पीछे हम छिप सकते हैं। तो ये तो बात हुई छुपन छुपाई के खेल की, लेकिन इस तस्वीर में और भी बहुत कुछ है। तो आस्तिक, क्या आप हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को बताएंगे कि खेल के मैदान में और क्या क्या हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल। खेल के मैदान में यहाँ पे 1 पक्षी उड़ रहा है और 2 पक्षी दाना चुग रहे हैं।
0: तो ये जरूर कबूतर होंगे?
1: नहीं, ये मैना भी हो सकती है।
0: हाँ, ये गौरैया भी हो सकती है।
1: और ये मुनमुन भी हो सकती है।
0: मुनमुन दरअसल इनके तोते का नाम है, तो आस्तिक को अपने तोते की याद यहाँ स्टूडियो में भी आ गई। बहुत प्यार करते हैं आप अपने तोते से। अच्छा आस्तिक, और बताइए कि इस तस्वीर में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं?
1: इस तस्वीर में एक बच्चा नल चला रहा है और दूसरी बच्ची पानी पी रही है।
0: और इस नल चलाने वाले उपकरण का नाम है हैंडपंप। इसे हम कहते हैं हैंडपंप, ठीक है? तो हैंडपंप को हमें चलाना पड़ता है। उसका एक डंडा सा होता है जिसे हमें उसे नीचे ऊपर करना पड़ता है और तब जाकर पानी निकलता है। तो दो बच्चे हैंडपंप पर हैं, एक लड़का हैंडपंप चला रहा है और एक बच्ची पानी पी रही है। अच्छा, हमारे खेल के मैदान में बच्चों के अलावा एक तो चिड़िया थी, ठीक है आस्ते? और कोई और भी है जो चुपके से सब बच्चों को देख रही है। क्या आप बता पाएंगे कि ये कौन है?
1: ये बिल्ली है।
0: बिल्ली को भी बहुत मजा आ रहा होगा यूं बच्चों को खेलते हुए देखकर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम खेल में हार जाएं, आस्ते आप कभी खेल में हारे हैं?
1: कभी कभी हारता हूँ।
0: और जब आप हार जाते हैं तो क्या आप रोते हैं? ईमानदारी से बताइएगा।
1: नहीं।
0: कभी नहीं रोए?
1: नहीं।
0: अच्छी बात है। तो अगर हम कभी किसी खेल में हार जाएं तो हमें रोना चाहिए या नहीं?
1: नहीं रोना चाहिए। हमें हार ये कहता है कि और मेहनत करो, जीतोगे किसी दिन।
0: वेरी गुड, शाबाश, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हार ये बताती है कि हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो हमें खेल को खेल भावना के हिसाब से ही खेलना चाहिए। खेलना जरूरी है। अब आप खेल में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए कि आप अपने किन दोस्तों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मैं अपने तीन दोस्तों के साथ खेल खेलता हूँ। पहले का नाम है गौरी, दूसरी का नाम है ओजस्वी, और तीसरे का नाम है वैभव।
0: अच्छा, और आप इन सब के साथ कौन से खेल खेलते हैं?
1: मैं इन सब के साथ छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और बर्फ पानी खेलता हूँ।
0: तो आप जब छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं तो आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में कहाँ जाकर छिपते हैं?
1: मैं अपने स्कूल के मैदान में ज्यादातर पार्क में छुपता हूँ।
0: लेकिन पार्क तो बहुत बड़ी सी जगह होती है। पार्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ आप जाकर छिप जाते हैं?
1: हमारे पार्क में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एक छोटा सा घर है। मैं कभी कभी उसके अंदर छुप जाता हूँ।
0: और कोई आपको पकड़ नहीं पाता?
1: नहीं।
0: कभी आप पकड़े नहीं गए छुपन छुपाई में?
1: नहीं।
0: तो छुपन छुपाई एक ऐसा मजेदार गेम है जिसमें हमें छिपना पड़ता है। पता है आस्तिक, एक बहुत मजेदार बात हुई। हमारे घर में दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मेरे भतीजे हैं। तो जो दो भतीजे हैं ये एक दिन मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तो जो सबसे छोटा वाला विशाल है, मुश्किल से 4 साल के हैं, और उन्होंने कहा हमें कि बुआ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ छिपना है, आप दोनों इधर आइए और यहाँ छिप जाइए। मुझे तो हंसी आई विशाल की बात पर कि इन्हें पकड़ना है और यही जगह बता रहे हैं कि हमें कहाँ छिपना है। लेकिन हम भी चतुर थे, जहाँ विशाल ने जगह बताई छिपने के लिए हम वहाँ छिपे ही नहीं, और हम जाकर छिप गए एक कमरे के दरवाजे के पर्दे के पीछे। और दरवाजे में था गुप अंधेरा और हमें ये पता था कि विशाल को अंधेरे से डर लगता है। अब विशाल इस कमरे में आए नहीं, क्योंकि अगर लाइट चली होती, रोशनी होती, तो वो कमरे में आते दरवाजे के पीछे तुरंत हमें पकड़ लेते। क्योंकि सारे बच्चे अक्सर ये जानते हैं कि छुपने की कौन कौन सी जगह होती है घर में, लेकिन विशाल जो थे वो अंधेरे से डरते थे और इसलिए कमरे में नहीं आए। पता है आस्तिक फिर आगे क्या हुआ?
1: नहीं।
0: आगे इससे भी मजेदार किस्सा हुआ। विशाल अपने पिताजी के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि पापा आप उस कमरे में चलिए। तो पापा ने पूछा कि उस कमरे में क्यों जाना है, वहाँ तो कोई नहीं है। पापा आप चलिए तो सही। और विशाल अपने पापा के साथ कमरे में आए। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा लाइट जलाइए। तो पापा ने कहा, लाइट क्यों जलानी है, हम इस कमरे में रहने वाले थोड़े हैं। तो विशाल ने फिर जोर देकर कहा, नहीं पापा आप लाइट तो जलाइए। पापा ने लाइट जलाई और तब विशाल ने तुरंत हमें दरवाजे के पीछे पड़े हुए पर्दे के पीछे हम खड़े थे और हमें तुरंत पकड़ लिया। पर हमने विशाल से कहा, विशाल ये तो चीटिंग है, आपने पापा का सहारा लिया, आपको खुद ढूंढना चाहिए था। तो ये तो था हमारा खेल छुपन छुपाई का। आपके साथ भी ऐसे बहुत मजेदार किस्से हुए होंगे और जो हमारे नन्हे श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, वे भी अपनी पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई की जो गतिविधियां होती हैं, जो खेल होते हैं, जो तरकीबें होती हैं, उनके बारे में याद कर करके मुस्कुरा रहे होंगे। हम भले ही अपने नन्हे मुन्ने श्रोताओं को न देख पाए, लेकिन हाँ ये तो जानते हैं कि इस समय वे क्या कर रहे होंगे। तो ये तो थी खेल की बात, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें भागना दौड़ना पड़ता है। अच्छा, और कभी आप जब भागते हैं दौड़ते हैं तो थकते नहीं है क्या?
1: कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थक जाता हूँ।
0: और अगर हमें ये थकान महसूस होती है तो हमें अपने खाने पीने पर यानी कि भोजन पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए कि हम ऐसे कौन से खेल हैं जो हम कमरे के बाहर यानी कि आउटडोर गेम है बाहर खेलते हैं, और ऐसे कौन से खेल हैं जिसे हम अपने घर के भीतर भी खेल सकते हैं। तो मैं पूछूंगी और आज हमारे साथ हमारे जो अतिथि आए हैं आस्तिक जी, वे बताएंगे। तैयार है आस्तिक?
1: बिल्कुल।
0: तो आस्तिक ये बताइए कि हम जब सांप सीढ़ी खेलते हैं तो इसे घर के अंदर खेलते हैं घर के बाहर खेलते हैं?
1: घर के अंदर खेलते हैं।
0: और जब हम लूडो खेलते हैं तो घर के अंदर खेलते हैं या बाहर खेलते हैं?
1: घर के अंदर खेलते हैं।
0: जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो घर के अंदर खेलते हैं घर के बाहर खेलते हैं?
1: हम घर के बाहर खेलते हैं।
0: कभी आपने घर के अंदर क्रिकेट खेला है?
1: नहीं।
0: नहीं। और अगर कभी खेलने की कोशिश भी की होगी तो कांच टूट जाएगा, खिड़की टूट जाएगी, सामान टूट जाएगा, इसकी डर की वजह से आस्तिक ने कभी घर के अंदर क्रिकेट खेलने को ट्राई नहीं किया। तो हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, वे कभी घर के अंदर क्रिकेट ना खेलें, बहुत सारा सामान टूटेगा और उषा दीदी की डांट पड़ जाएगी कि हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि क्रिकेट का खेल घर के अंदर खेलिए। डांट मुझे भी पड़ सकती है और डांट आपको भी पड़ सकती है। अब डांट किसी को भी पड़े बुरा तो लगेगा, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अब अगर हम बात करते हैं स्टापू की, तो इसे हम घर के अंदर खेल सकते हैं या बाहर खेलेंगे?
1: इसे हम घर के बाहर खेलते हैं।
0: अगर हम इस टापू को घर की छत पर बना लें तो हम घर में रहकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये घर के अंदर खेलना तो ना हुआ क्योंकि हम छत पर खेल रहे हैं। आज से एक और मजेदार बात मुझे याद आई, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: तो हुआ यूं कि बहुत समय पहले की बात है, तो एक बार मैं और भाव्या खेल रहे थे। भाव्या 5 साल की बच्ची है और बेहद पतली दुबली है। तो एक दिन मैं और भाव्या खेल रहे थे और इतने में नित्या भी आ गई। तो नित्या ने कहा कि हम भी खेलेंगे। हमने कहा हम तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो नित्या ने कहा कि हम भी छुपन छुपाई खेलेंगे। इतने में आर्यवीर भी आ गए, आरना भी आ गई और रोहित भी आ गए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो हम 5-6 बच्चे सब मिलकर छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। अब बाजी देने की बारी थी, यानी कि जिनकी बारी थी गिनती गिनने की और छुपे हुए बच्चों को खोजने की, वह बारी थी नित्या की। अब भव्या को छुपने की कोई जगह नहीं मिली, तो पता है हमने क्या कहा? हमने कहा भाव्या आप हमारे पीछे छिप जाइए, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और भाव्या पतली दुबली से हमारे पीछे छिप गई और नित्या उन्हें देख ही नहीं पाई। और जैसे ही नित्या हमारे पास से निकली और भाव्या ने नित्या की पीठ पर एक हाथ लगाया और कहा धप्पा, और नित्या फिर आउट हो गई। तो ये था मजेदार खेल छुपन छुपाई का। मैं जानती हूँ हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वे भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आप बच्चों को करना क्या है, आप हमें अपने

0: नहीं।
1: कभी गिल्ली डंडा देखा है?
0: नहीं।
1: तो आसिक जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ना तो कभी गिल्ली डंडा खेल देखा और ना ही कभी गिल्ली डंडा को देखा। बच्चों, गिल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें दो चीजें चाहिए, एक गिल्ली और एक डंडा। डंडा तो आप सब बच्चे जानते होंगे, यानी कि बांस का लंबा सा टुकड़ा जो बहुत मजबूत होता है। इस डंडे के साथ हमें चाहिए गिल्ली। गिल्ली एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, एक ढोलक नुमा टुकड़ा जिसके सिरे बहुत पतले होते हैं और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। पता है आस्तिक इसमें करना क्या होता है?
0: नहीं।
1: इसमें हम क्या करते हैं, गिल्ली को एक जगह रखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम गिल्ली जहाँ रखी जाती है उसके नीचे एक गड्ढा कर देते हैं। अब उस गड्ढे के ऊपर हम टिकाते हैं गिल्ली को और फिर हम उस गिल्ली के नीचे लगाते हैं अपना डंडा और गिल्ली को उछाल देते हैं और गिल्ली को उछालने के बाद हम उसे डंडे से मारते हैं और गिल्ली बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, गिल्ली को हम रखते हैं जमीन पर और जमीन पर रखने के बाद गिल्ली का जो सिरा होता है, जो पतला होता है, उस पर हम मारते हैं डंडा, गिल्ली उछलती है और उस उछलती हुई गिल्ली पर हम फिर से एक डंडा मारते हैं और गिल्ली को बहुत दूर फेंक देते हैं। जो हमारे बाकी साथी होते हैं, बाकी दोस्त होते हैं, वे सब इतनी दूर जाकर खड़े होते हैं ताकि वे गिल्ली को पकड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट के मैदान में हम गेंद को लपकने के लिए खड़े होते हैं। तो ये होता है हमारा गिल्ली डंडा का खेल। तो आज तक हम अपनी कहानी शुरू करें?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो बच्चों, ये कहानी है जीत और बबली की और उनके दोस्तों की। वे क्या खेल खेल रहे हैं? गिल्ली डंडा। एक दिन सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत ने गिल्ली को उछाला। पता है उसके बाद क्या हुआ?
0: नहीं।
1: उसके बाद सब लोग उसे पकड़ने दौड़े। गिल्ली तालाब के पार चली गई। गिल्ली बबली के पास जा गिरी। बबली ने गिल्ली उठाई। बबली उसे तालाब के पार फेंकने लगी। तो आस्तिक ये बताइए कि बबली ने गिल्ली को तालाब के पार क्यों फेंका?
0: बबली ने ऐसा इसीलिए करा जिससे कि वो गिल्ली उनके पास पहुंच जाए।
1: लेकिन पता है क्या हुआ आस्तिक? गिल्ली तालाब में ही गिर गई।
0: ओ।
1: गिल्ली तालाब में गिर गई। अब उस गिल्ली को कौन उठाए? सब गिल्ली को लेकर बहुत परेशान हो गए। बबली को तैरना आता था, तो बबली कहाँ गई होगी?
0: तालाब में।
1: शाबाश, वह तालाब में कूदी और गिल्ली ले आई। सब खुशी से चिल्लाने लगे। तो सब खुशी से क्यों चिल्ला रहे थे?
0: क्योंकि बबली ने उनके लिए तालाब में छलांग मार के गिल्ली उठा ली।
1: शाबाश, बिल्कुल सही बताया। बबली सबके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगी। बबली को गिल्ली डंडा खेलना आता है। बबली ने जोर से डंडा घुमाया और फिर क्या हुआ, गिल्ली फिर तालाब के पार चली गई। तो अब इसके बाद क्या हुआ होगा?
0: इसके बाद कोई गया, बबली फिर से तैर कर गई होगी। हाँ, गिल्ली नाने।
1: क्योंकि बबली को ही तालाब में तैरना आता था। तो बबली ने जैसे ही देखा कि गिल्ली वापस तालाब में चली गई है, तो उसने कहा, ओह, अब मुझे वापस तालाब में कूदना होगा, गिल्ली निकालनी होगी ताकि हम सब बच्चे मिलजुल कर गिल्ली डंडा खेल सके। तो अब आज तक ये बताइए कि अब आप गिल्ली डंडा का खेल खेल लेंगे?
0: हाँ बिल्कुल।
1: और क्या आप गिल्ली बना भी लेंगे?
0: कोशिश करूंगा।
1: गिल्ली को छीलना पड़ता है, यानी लकड़ी के एक टुकड़े को हमें छीलना पड़ता है और उसे ढोलक की शक्ल देनी होती है, यानी उसके सिरे पतले होंगे और बीच का हिस्सा मोटा होगा। तो आप गिल्ली बना सकते हैं, डंडा आपके पास होगा और आप यह गिल्ली डंडा का खेल घर में तो बिल्कुल भी मत खेलना, बहुत डांट पड़ेगी। आपने जोर से डंडा घुमाया और गिल्ली गई बर्तनों के अंदर और फिर जो बर्तन एक एक करके गिरेंगे उसके बाद आपकी अम्मा आप पे इतना चिल्लाएंगी कि ये क्या किया है, सारे बर्तन गिर गए, लाओ मैं तुम्हारी खबर लूं। तो फिर आप आगे आगे और आपकी अम्मा आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएंगी। ये सीन देखकर तो मुझे बहुत मजा आने लगा है अभी से कि क्या नजारा होगा कि बच्चा आगे आगे और उनकी माँ पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है। तो बच्चों, गिल्ली डंडा हमेशा घर के बाहर खेलिएगा।

0: और ऐसी सुरक्षित जगह पर खेलिएगा ताकि अगर गिल्ली किसी जगह पर गिरे तो किसी को चोट ना लगे, ठीक है। और गिल्ली डंडा कहाँ नहीं खेलना? तालाब के पास नहीं खेलना, क्योंकि अगर गलती से भी गिल्ली तालाब के अंदर चली गई तो वहाँ आपकी गिल्ली निकालने के लिए बबली तो होगी नहीं। तो अब आपको खोजना पड़ेगा एक ऐसे बच्चे को जिसे तैरना आता है, और अगर किसी बच्चे को तैरना नहीं आता तो फिर आपकी गिल्ली तो गुड़ुप करके तालाब के अंदर ही रहेगी, है ना। तो ये थी हमारी कहानी जो बहुत मजेदार थी, जिसका नाम था गिल्ली डंडा। अच्छा, अब आसिक ये बताइए कि अगर बबली को तैरना नहीं आता तो क्या होता?
1: अगर बबली को तैरना नहीं आता तो फिर गिल्ली पानी के अंदर डूब जाती।
0: और क्या बच्चे गिल्ली डंडा खेल पाते?
1: नहीं।
0: अगर बबली को तैरना नहीं आता तो गिल्ली तालाब के अंदर ही रहती और बच्चे नहीं खेल पाते। अगर आस्तिक मैं ये कहूँ कि तालाब के अंदर गिल्ली चली तो गई और बाहर नहीं आई, लेकिन तब भी बच्चे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, भले ही थोड़ी देर बाद खेलें, लेकिन वे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, ये कैसे होगा?
1: बहुत आसान है, वो किसी मोटी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसे गिल्ली के आकार में छील देंगे।
0: बहुत चतुर हैं आस्तिक। मैं भी यही सोच रही थी कि हम एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाएंगे, उसे छीलेंगे, ढोलक की आकृति जैसा बना देंगे और फिर हमारी एक नई गिल्ली तैयार हो जाएगी। आस्तिक, बहुत चतुर हैं आप। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी? और अगर आप बच्चों के पास भी अपने खेलों को लेकर कोई मजेदार किस्से हो तो हमें जरूर लिखिएगा। एक बात और वो ये बात है कि जब आप अपने खेल के बारे में लिखें तो उसकी तस्वीर बनाना न भूलें, ताकि हम भी तो देखें कि आपका खेल का मैदान कैसा है या आप कहाँ खेलते हैं। इस बहाने हम आपकी जगह को देख भी लेंगे, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: तो आपको आज की बातचीत में मजा आया?
1: बिल्कुल।
0: और हमें मालूम है कि आस्तिक के साथ साथ हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत मजा आया होगा। अब स्कूल की याद आ रही होगी, खेल का मैदान याद आ रहा होगा और याद आ रहे होंगे अपने प्यारे दोस्त। तो आज आस्तिक भी आपके दोस्त बन गए। तो यूं धीरे धीरे हम सारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे और आपस में खूब बातें किया करेंगे, प्रॉमिस? ठीक है, तो आपकी तरफ से मैं वादा करती हूँ आस्तिक के साथ, और आस्तिक अपना वादा खुद कहेंगे। आस्तिक, आप हमारे स्टूडियो आएंगे ना?
1: बिल्कुल।
0: तो आस्तिक ने भी आप बच्चों से वादा किया और हमसे भी वादा किया कि वे स्टूडियो जरूर आएंगे। तो हम अपनी आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, और जाने से पहले, विदा लेने से पहले हम आस्तिक जी का धन्यवाद देते हैं। आस्तिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: और हम विदा लेते हैं अपने नन्हे मुन्ने श्रोताओं से। अगली बार एक अच्छी कहानी, एक मजेदार कहानी और खूब मजेदार बातों के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे आस्तिक के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। होमवर्क भी कभी कभी कर लिया कीजिए, लेकिन खूब खेला कीजिए, ठीक है बच्चों? तो आप सभी बच्चों को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, तकनीकी सहयोग विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है, और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे

0: मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Billy, Billy, Billy, Billy.
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियां, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा

बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
0: बहुत बढ़िया।

0: ऊपर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: तुम्हारा टैंक चल रहा है, अबैंडन टैंक राइट नाउ।
3: दोस्तों, लोड अबैंडन माय टैंक। माय कार इज स्टिल वर्किंग। आई गेट दिस मास्टर्स।

0: फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती हैं सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली है।

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉर ऑर्डर्स।
1: अरे तो उसे भी मिला था वापस आने के लिए, कमबख्त माना नहीं। लड़ता रहा।
2: एक भी देख, एक इंच पीछे नहीं हटेगा। सामने से वो
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: गगन खोखरी फतेह।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा

0: देवांश क्या करेगा? 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम। हे बाबू, आप

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: mixing in the house.
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 90.8 FM सगन सुन वारनकू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
2: जनहित में जारी।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है, जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुरू शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया,
2: अपने धंधे की फितरत समझिए। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है